说奈哦奈我是那辈那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那ए तम हा लाय अनंगवाय ता ताव लाव ने ता वा ना वे ता ले हे हे ला ता ए ता क्वा हम ए तो छे से को ले लो ए हे नोक नो पेने वे जोरो से पल में तबे बोल मना तै पो ततने कस भाई न मिसो पतो तक से तल पवा हे तम न न कुसने कोई निया ओ वैसा लाप सन वे हे तम हा लाए अनंगवाय ता ताव लाव ने ता वा ना वे ता ले हे हे ला हे हे अने हवा पे हे मे हो या तबे बोल मना ते से हे ओ ना पे अस्ताबो क्ले तो खापामो नो ये ओ मे ता ता ला ओ या ने बोवा Hey.